0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

माधव दास डेरे विच नहीं सी, ए बाहर गया होया है। इनू इहदा इक चेला भज्या होया जांदा ते जाके कहिंदा है तेरे पलगे दे उत्ते आके पंजाब तो एक ग्रिती गुरु बह गया, उन्हां दे पत्थे तीर उन्हां दे कोल कमान उन्हां दी रेशमी अचकन तिलेदार जोड़ा है, शीश दे उत्ते रेशमी कलगी दमालियां ते चक्कर चढ़े हुए ने, इंज लगदा कोई ग्रिती मनुख आके तुहाडे आश्रम ते बह गया। हुण त्यागी ते बरागी माधव दास ये किवें होया बहुत लंबेरा यह चैप्टर है, तुहाडे नाल समय समय अनुसार सांझा करदा रहांगा। पर दूरों वेखिया साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं इन्हें टिल लाया रिद्धियां सिद्धियां निधियां वरतियां। गुरबाणी कहिंदी रिद्ध सिद्ध अवरा साध, रिद्ध सिद्ध नावे की दासी। थोड़ा जिहा गल होर मैं सरल कर दिया, हिरदा शुद्ध नाम ही होवे ते बंदे दे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां। कई लोग छिले कटदे ने, कई जादूगरी करदे ने, इस तरह कई वार हिरदा शुद्ध नहीं हुंदा पर बंदे दा बोल जिहड़ा उह सिद्ध हो जांदा है। पर इहदा मतलब इह नहीं उह मुक्त हो गया, क्योंकि रिद्ध सिद्ध अवरा साध। गुरबाणी कहिंदी नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरै जो हर हिरदे सदा वसाए। जिहदे हरी हिरदे च वस गया उहदे अगे पिछे रिद्धियां सिद्धियां फिरदियां पर उह वरतदा नहीं, उह किसे दा नुकसान करन वास्ते जां करामात विखाउण वास्ते नहीं वरतदा। पर इह करामाती हो गया उहदे कारण की सन बाद विच बयान करांगा। आओ गुरु कलगीधर पातशाह दे सामणे जदों सारा टिल ला लिया इहदी कोई पेश ना गई ते चरणा ते आके कहिंदा पातशाह मैं यतन बड़ा कीता है, दसो तुसीं कौण हो। जिवें आके चरणा ते डिगदा है प्यार नाल सरण करो बीए दा ढाडी जथा इउं मैने कर रहा।

होई जो तत बिचारे कोई। मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है, नामदेव कहते ने, लेकिन वो चमड़े का मड़िया होया नहीं है, पर वज रहा है, अठे पैर वज रहे है, बड़े सुर दे च वज रहे है, बड़े ताल दे च वज रहे है। अणमड़िया मंदल बाजे, अज तक दे तमाम सिरमोर भगतों ने ऐसा आख्या कि साडे अंदर संगीत की धुन चलती है, राग की धुन चलती है, ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने, भगत लोग ने। दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत, परम रस, परम आनंद। परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है, परम संगीत नाल जुड़ना है, महान स्वप्न नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि पुराण पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। सत चित आनंद वो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत सुहान सदा मन चाओ, गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने, वो सत है सुहान, वो अति सुंदर है। सदा मन चाओ वो सदी भी खिड़िया है, उसके चित दे सुंदरता है, दैवी गुणा दी स्वप्न है, परम संगीत है। तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है, परम संगीत नाल जुड़दा है, परम स्वप्न नाल जुड़दा है, परम आनंद नाल जुड़दा है। इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता प्रगट हुई है। आपते साफ कहने ने, प्रण में नाम देव ना के बिना ना सोहे बत्ती लखना। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे बत्ती लखण भी मनुख दे कोल आवन, पर दैवी सुंदरता दैवी गुणा दा जो स्वप्न है ए बंदे कुल ना होवे तो बत्ती लक्षण भी किसे काम दे नहीं। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप। भावे कितना ही सुंदर होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहने ने मेरे अंदर परम स्वप्न पैदा होया और परम आनंद पैदा होया, ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गई ने, नाद वज रहा है। अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन घन हर गाजे। बिना सावन तो मेरे अंदर बदल गरजदे पैने। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख बरे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल। गुरु रूपी बदल मेरे अंदर गरज रहा है, परमात्मा दा गर्जन शुरू है और अमृत नाम दी बरखा मेरे हृदय ते हो रही है। परम संगीत परम नाद मेरे अंदर छिड़िया होया है और इत्थों गल स्पष्ट हो गई, प्रभु नाल जुड़ना परम संगीत नाल जुड़ना है, परम हरियावल नाल जुड़ना है, परम आनंद नाल जुड़ना है, परम स्वप्न नाल जुड़ना है। श्री नामदेव जी महाराज दे अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ये दो ढंग ने। जो बौद्धक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा। पर जो ना बौद्धक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा
ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਦਮ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਮ ਗਰਮ ਯੇ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਯੇ ਨੂਰ ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਬੰਦੇ ਅਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹੁੰਚ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹੁੰਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਦੀਵ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉਲਝ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਤਨਾ ਤਨੀ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਜਹਾਂ ਪੇ ਥੀ ਵਹੀਂ ਪੇ ਰਹੀ। ਆਖਰੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਪੀਏ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦ ਐਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੌਧਕ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਇੰਜ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਛੀਣ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਬਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ, ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ, ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ
ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਾਰੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਛੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਪੂਰਵ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਨ ਤਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਰਿੰਡ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨਹਿ ਪਰਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने गागर खूब मांजी है, इशनान कीता है, गागर नू भरे है, ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उना ते पै गई, कुछ कछुए सन उना ते पै गई। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया, आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक, ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग कर देने। बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बीठल मंदिर पंडरपुर देश, और ओ तीरथ है, और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, ए बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरया है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा कि पानी पवित्र नहीं है। क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे चिने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने। जन्म उना दा पानी देच, जीवन उना दा पानी देच, मरण उना दा पानी देच, सारी क्रिया पानी देच, और एक कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी देच। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने, जेदे चों 42 लख जल देच ने, 21 लख थल जंतु ने, और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश देच उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है, पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी देच है। तो नामदेव कहंदे ने, जद जीवन पानी देच है, जन्म पानी देच है, मरण पानी देच है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा, ए ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए, और सोच रहे ने अज ठाकरा नूं इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है, ते ए ते ठाकरा नूं अपवित्र करना होवेगा। पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है, गालबन 11 साल दी उम्र देच, छोटे ने, बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है, ते पुत्र नूं समझाया है, ए सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने, ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं, ये जल ते अपवित्र है, ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जिही टोकरी लैके आप बगिया विच गए, फुल तोड़न लगे ने, ते फुलां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देखदे आई एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुलां दे चों रस कढ रहीआं ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने, इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने, इन्हां दे चों रस ते शहद दीआं मक्खियां कढ के लै जांदीआं, तितलियां कढ के लै जांदीआं। लिहाजा इन्हां फुलां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावां, जदके इन्हां फुलां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लैंदे ने, तितलियां पहले ही कर लैंदीआं ने, शहद दीआं मक्खियां पहले ही कर लैंदीआं ने। आ नीले फूल परोई ले माला, ठाकर की हो पूज करो, पर पहले बास लई है भौरे, बीठल भेला काहे करो। हु बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोविंद पूजा कहां ले चराओ, अवर ना फूल अनूप ना पाओ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तेनू इशनान करावा, ओ ते जल अपवित्र कर दिता है, मीन ने फुल ते अपवित्र कर दिते ने, भौरियां ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ठाकरा नूं पिलाना ने, तो अपनी माता नूं आखिया गऊ चो दिओ, दुध चाहिदा। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया,
बछड़ा थन चुंगन लग पिया। ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहिंदे ने, पहले ए बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा तां ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहन लगे, मां मैनूं ए दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरा नूं नहीं लवाना। क्यों? आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बितारो बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल, दस मैं की करा, ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें पवित्र कर देता है। थना बिच दूध ता बछरे थनो बिटारो। भगत रविदास जी महाराज कहंदे ने, आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बिटारो बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल, दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना देच ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने, सोच दे च पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे च आप पए ने, ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। हे प्रभु, जद मैं सोचया कि तेनु इशनान करावा, ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल देच इशनान कर रहे हैं, मैं तेनु की इशनान करावा। हे प्रभु, जद मैं तेनु सोचया, तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा, ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनु कराया जांदा है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहिब कहिंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने, सड़ा तन मैला सड़ा मन मैला। हे प्रभु, तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, इशनान ते मैं तेनु तां करावा कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं, और तेनू की इशनान करावा, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु, जल विच तू, मच्छी रिच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहिंदे ने, हे प्रभु, जद मैं सोचया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दूध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दूध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है, गऊ तू बछड़ा तू दूध तू, तू ही तू है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेवया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे च प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चो, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तू है। इसनो श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुद्ध, जाहिद फिदाए खान का, हर कुजा जा में मोहब्बत,
दीदायम सरशारस्त ब्राह्मण लभदा है तेनों बुतां दे चौं और मुस्लिम लभदा है तेनों खानकाह दे चौं पर हर कुछ आ जा मैं मुहब्बत मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है हर पासे तो ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद ना में सोई सेविया ना देहोरा ना मसीद तो फिर किथे है जे मंदिर ते मस्जिद दिच नहीं तो फिर किथे है। तो नामदेव कहते हैं सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे मेरा राम घट घट विच बोल रहे है और राम तो बिना कौन बोल सकता है राम ही बोल रहा है पशुआ विच राम ही बोल रहा है पक्षियों विच राम ही बोल रहा है मनुखा विच राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां विच राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन विच बदलां दे गर्जन विच और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कूह विच बुलबुलां दे चहचहाण विच हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है वो अखंड ज्योति है खंडित नहीं है टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है अखंड ज्योति है व्यापक है पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है किवें पहुंचिए मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है बना बनाया कोई मार्ग नहीं है चलदियां ही मार्ग बनदा है आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं बस उड़दियां ही रस्ता बनदा है ते मच्छी दे चलदियां ही सागर विच मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है बना बनाया मार्ग नहीं है। इत्थे जपदियां मार्ग बनेगा इत्थे नाम उचारण करदियां ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां चलना सानू पैंदा है सड़क नहीं बनानी पैंदी पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी एक रेखा बन जांदी है एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए बस आरंभ करदियां ही मार्ग बनदा है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनदा है उंज कोई रस्ता नहीं इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचदा है। इसनू खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने गुरुमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा गुरुमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वह परमात्मा की खोज इस तरह कर लैंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है बिना मार्ग के उड़दियां ही मार्ग बनदा है चलदियां ही मार्ग बनदा है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदियां ही जपदियां परमात्मा तक पहुंच जांदा है ईश्वर तक पहुंच जांदा है अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहु श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे हैं मार्ग बना बनाया नहीं है
राम राम जपदे आई राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होगी। राम नाम दे च लीन, बिठल बिठल दे च लीन, श्री नाम देव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल दे च लीन करदे रहे, राम दे च लीन करदे रहे और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम दे च लीन कीता, बिठल दे च लीन कीता और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु दे च लीन हो गए। और ए लीनता ऐसी होई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।

जल कै मजन जेगत होवै नित नित मेंढक नावै है। जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै है। जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै है। कहिंदे जे नहाया ही मुक्ति मिलदी तो डड्डू पानी च ही रहिंदा है, वो तो मुक्त होया ना, वो तो जूना च 184 जोन भरमाया। महाराज ने इत्थे इशनान का खंडन नहीं किया, इत्थे ये समझाया है भाई जी जे केवल तन नूं ही स्वच्छ रखोगे, नाम नहीं जपोगे ते नहाउंदा ते डड्डू भी है इदा मुक्ति थोड़ा आउंदी है। पर जिन्हां नहाउणा नहीं हुंदा वो चाके पंक्ति बड़ी व्याख्या करनगे, 9 बजे तक सुते नहीं उठना, इशनान नहीं करना। उन्हां दा इरादा है भी सिक्खी नूं ही सुखाला कर लो, कमाई करनी तो औखी है, मुशक्कत घालनी तो औखी है, ना आप नहाना ना किसी नूं नहाउण ही देना ना नाम ही जपण देना। असल सिक्खी का सिद्धांत है उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर आराधे। अमृत वेले उठो, तन दा इशनान जल विच करवाओ, परमेश्वर की आराधना करो, मिलेगा की बिखड़े दाओ लंघावै मेरा सतगुर, सुख सहज सेती कर जाते। कहिंदे जीवन विच कोई भी कठिन दाओ है, मुशक्कत है, बिखड़ा पैंडा है, विघन है, वाहिगुरु सौखा ही निगा देवेगा, सौखा ही पैंडा तय करवा देवेगा। तो इत्थे की समझाया गया, कहिंदे वाहिगुरु दुनिया ते बड़े लोग तीर्थ नहाउण वाले ने, इशनान करन वाले ने, बड़े लोग पानी विच चुभियां लाउण वाले ने, पर तू मुख इशनानी है, श्रोमणी इशनानी है, भाव सभना दे विच तेरी ही जोत है। जे कोई धार्मिक स्थान ते इशनान करदा उह तेरा ही रूप है, जायो समझ लो सब तो महान इशनान तेरे नाम विच ही हुंदा है। जेड़ा तेरे नाम विच मनदा इशनान कराउंदा उहदा जीवन सफला हो जाता है। तो इस प्रकार नाल गुरु अर्जन साहिब पातशाह अगे वचन करते ने, सिद्धन मह तेरी प्रभ सिद्धा करमन सिर करमा। हुण इत्थे लफ्ज़ है सिद्ध, जिहदे कोल सिद्धियां ने, जिहदे कोल करामातां ने, मुकम्मल संत महात्मा, हू गॉट ऑल द सुपरनैचुरल पावरस, मिरेकुलस पावरस, हर करामात है जिहदे कोल। इन्नी करामात हुंदी है कईआं कोल, बाणी चाहुंदा है सिद्ध होवा, सिद्ध लाई रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ। कहिंदे सिद्ध चाहुण ते गुप्त हो जाण, इनविजिबल, अखां नूं दिखण ही ना, सिद्ध चाहुण ते प्रगट हो जाण, स्थूल शरीर धार लैण, इन्नी करामात हुंदी है। आउंदी कित्थों है? नाम पदार्थ नौ निद सिद्ध, जिहड़ा नाम जपदा है उहदे कोल रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां ने। ऐ वाहिगुरू जे दुनिया ते कोई करामाती है वह एक बुलबुला है, तू करामात दा सागर है, ते इत्थों ही सारे करामात लैंदे ने, अजमत लैंदे ने। नाल महाराज आंदे दुनिया दे विच बड़े लोग नेक नामी ने, नेक कर्म करन वाले ने, कर्म कांडी ने। महाराज जिन्ना चाहे कोई कर्म कांडी है उन्हां दे सिर ते भी तेरा ही कर्म है, भाव तेरे हुक्म विच ही वह कर्म करदे ने। जे कोई दुनिया ते उद्यमी है, उद्यम करदा, तू उहदे तों भी वड्डा उद्यमी है, महान उद्यम बख्शण वाला है, कृपा करन वाला है। तो कर्म दा भाव उधारता भी हुंदा, मेहरबानी भी हुंदा। जे दुनिया ते कोई उधार चित है, दाता है, वंडन वाला है, तू हर दातार नालों वड्डा है, क्योंकि जो वंड रहा है उहनूं भी तू ही दिता है, तेरे खजानियां चों ही सब लै लै के वंडदे ने। ना जाना कर्म केवड तेरी दात, तेरी दात किड्डी क बुलंद है, तेरा कर्म किड्डा क महान है, किन्नियां क नूं तू खवाउंदा है, पियाउंदा है, छकाउंदा है,
ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

0: to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: कई कोट भय वैरागी,
1: राम नाम सख तन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजंते,
1: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रभ्यास,
1: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
0: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
1: आप ब्रह्म तिन लगा रंग,
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
1: नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी अर खंड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जग की नविस्तार,
0: कई बार बसरे उपासार,
1: सदा सदा एक एक अंकार,
0: कई कोट कीने बो भांत,
1: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
0: ताका अंत न जाने कोई,
1: आपे आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
1: जिनहो वत्या तन प्रगास,
0: कई कोट तत्व के बेते,
1: सदा नहारे एको नित्रे,
0: कई कोट नाम रस पीवे हैं,
1: अमर पहे सर सर ही जीव हैं,
0: कई कोट नाम गुण गावे हैं,
1: आत्मा रस सुख सह समावे,
0: अपने जन को साथ साथ समारी,
1: नानक को हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
0: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं कोई,
1: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोई, अष्टपदी
0: करण करावन करने जोग,
1: ज्योत भावे सोई होग,
0: फिर मैं ताप उताप नहारा,
1: अंत नहीं किस पारा वारा,
0: हुक्मे धार अधार रहावे,
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
1: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
0: कर कर दिखे अपनी बड़ियाई,
1: नानक सब में रिया समाई,
0: रब भावे मानो गत पावे,
1: रब भावे ता पात्र त्रावे,
0: रब भावे बिन शास्ति रखे,
1: रब भावे ता हर गुण पाखे,
0: रब भावे ता पत उधार है,
1: आप करे अपन विचार है,
0: दोहा श्रिया का आप स्वामी,
1: खेले से अंतर जामी,
0: जो भावे सो कार करावे,
1: नानक दृष्टि और नयावे,
0: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
1: ज्योत भावे सोई करावे,
0: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
1: ज्योत भावे सोई करे,
0: मन जानत बिखिया मह रचे,
1: जे जानते अपने आप बचे,
0: भरमे भूला दह दिस धावे,
1: नमक माही चार कुंड फिर आवे,
0: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे,
1: नानक तेजन नाम मिले,
0: छिनवै नीच कीट को राज,
1: बार ब्रह्म गरीब नवाज,
0: जाका दृष्ट कछु न आवे,
1: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे,
0: जाको अपनी करे बख्शीस,
1: ताका देखा ना गणेश
0: जीव पिंड सब इसकी रास,
1: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
0: अपनी बनत आप बनाई,
1: नानक जीव देख बढ़ाई,
0: इसका बल ना ही इस हाथ,
1: कल करावन सर्व को नाथ,
0: आज्ञाकारी बपरा जियो,
1: ज्योत स्वभाव है सोई फन थी,
0: कब हूँ ऊंच नीच मैं बसे,
1: कब हूँ सोग हर करंग हसे,
0: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
1: कब हूँ कुंभ काश प्याल,
0: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
1: नानक आप मिलावन हार,
0: कब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
1: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
0: कब हूँ महाक्रोध विकराल,
1: कब हूँ सर्व की होतर वाल,
0: कब हूँ होए वह बड़ राजा,
1: कभू भिखारी नीच का साजा,
0: कभू अब कीर्त में आवे,
1: कभू भला भला कहावे,
0: ज्यों प्रभ राखे ते भी रहे,
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
0: कभू होए पंडित करे बख्यान,
1: कभू मौन तारी लावे ध्यान,
0: कभू तट तीर्थ स्नान,
1: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
0: कभू पीठ हस्त पतंग होए दिया,
1: अनक जौन परमे परमिया,
0: नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे,
1: जो प्रभ भावे तिवे न जावे,
0: ज्योत भावे सोई होए,
1: नानक दूजा अवर न कोए,
0: कभू साध संगति पावे,
1: उसे स्थान ते बौर न आवे,
0: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
1: उस स्थान का नहीं विनाश,
0: मन तन नाम रति एक रंग,
1: सदा बसै पर ब्रह्म का संग,
0: ज्यों जल में जल आए कटाना,
1: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
0: मिट गए गवन पाए विश्राम,
1: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक,
0: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
1: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान,
1: सो नरक पाती होवत स्वान,
0: जो जाने मैं जो बनवंत,
1: सो होवत बिष्टा का जंत,
0: आप उसको कर्मवंत कहावे,
1: जन्म मरे पो जोन परमावे,
0: धन भूम का जो करे गुमान,
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान,
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे,
1: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे,
0: धनवंता हुई कर गर्भावे,
1: तरण समान का चंग न जावे,
0: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस,
1: और भीतरता का हुए विनाश,
0: सत्य आप जाने बलवंत,
1: होए जाए पसवंत,
0: सेना पद आप अहंकारी,
1: धर्म राय तिस करे खुआरी,
0: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान,
1: सोजन नानक दरगाह परवान,
0: कोट कर्म करे हों तारी,
1: शरम पावे सगले प्रथारे,
0: अनक तपस्या करे अहंकार,
1: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार,
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे,
1: हर दरगाह को कैसे गवे,
0: आप को जो भला कहावे,
1: इसे भलाई निकट न आवे,
0: सर्प की रेन जा का मन होए,
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझते कश होए,
1: तब इस पौसुख नाही कोए,
0: जब यह जाने मैं किस करता,
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता,
0: जब धारे को बैरी मीत,
1: जब लग नेचर नाही चीत,
0: जब लग मोह मगन संग माए,
1: तब लग धर्म राय देश जाए,
0: रब कृपा ते बंधन टूटे,
1: गुरु को साधना अनक हो छूटे,
0: सहस कटे लख कोट तावे,
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे,
0: अनक भोग विखिया के करे,
1: नैत बतावे खप खप मरे,
0: बिना संतोख नहीं को राजे,
1: सुपन मनोरथ फिर थे सब काजे,
0: नाम रंग सर्व सुख होए,
1: प्रभागी किसे प्राप्त होए,
0: करन करावन आपे आप,
1: सदा सदा नानक हर जाप,
0: करन करावन करने हार,
1: इसके हाथ कहां विचार,
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए,
1: आपे आप प्रभ सोए,
0: जो किस पीनो सो अपने रंग,
1: तब ते दूर सब हूँ कै संग,
0: दूजे देखे करे विवेक,
1: आपे एका पै अनेक,
0: मरे न बिनसै आवै न जाए,
1: नानक

0: अथी रह समाये
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचया सबके साथ
1: आप तीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पे न कहो किश होए
0: आंत नंतर एक ऐसो है
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंगे अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनुरूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जप नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटै
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटै
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो हे मलीन
0: संत का दुखन शोभा दे
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करै
0: नानक संत संग निंदक भी तरै
1: संत के दुखन ते मुख पवै
0: संतन का दुखन काग ज्यों लवै
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत का दुखन सब को छलै
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावै ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरै
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावै ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते सोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावै ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: ज्यों बुआर तिल खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावै सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजै ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख ना त्रिष्टै कोई
0: जैसा भावै तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेल अब करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: तिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम को जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरसी सब जान
0: देवन को एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाहे
0: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे एको आप
0: मानक कक्षना ही हाथ
1: इसका हुक्म भू सुख होए
0: इसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग
0: सह संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद
0: मिटा पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: आदर ज्ञान नानक उजल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतक नहीं संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: ते तुत कियो सोजी जाने
1: नाम संग जिस का मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सात संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: आन दिन कीर्तन केवल बखियान
0: मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: इसकी कटिए जन की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक दसन लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे
0: सो संत सोहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभ अपना कृपा करे
0: सो सेव को किसते डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
0: अपने कार्ज में आप समाया
1: शोधत शोधत शोधत सीजया
0: प्रसाद तत् सब पूजया
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैं नै किस मरे
0: अपन चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब
1: सृष्टि आपे आप सगल में आप
0: अनंत जग त्रच था पे था
1: अविनाशी नाही किस खंड
0: धारण धार रहे ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
0: आप जपाए त नानक जाप
1: जिन प्रभु जाता सो सो पावंत
0: सगल संसार उदर तन मंत्र
1: ਕੇ ਸੇਵਕ ਸ਼ਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਈ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਜਪ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਸਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरहु गोबिंद
1: मन अंतर की उतरै चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर लेहु भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: संत कमाप्त हो उदहार
1: आप त्रैलोक कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिनकै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर भई सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भई गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल विकास के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक रवहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सुहोत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन कै मुख भनि
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: ओट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरण ता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊज ता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

0: पामह
1: सुख कनेरे
0: कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूतर तार तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास तुदिया गैर दास हमारी जियो पिंड सब

रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: Mercy.